0: मिङ्गाचुवै तै त हो कासना नलिगु सिन्तिरिस्पा समुख बने का नचा रिगुस्पा लिखा वांगी मांग
1: अरे अरे चैता से तानिंग का बसा मुख यानी हम अपन नहीं चैता का न्याप से कच्चा मुसा जो खान पिशुन से मर चे ऑफिशियल लिखे रहे अल चिंबी तब वाको चिल का कुन मार को तो न्याप चंकी कांसे थे
0: निका बा कई बिजनेस तो मारे ताई तमाई तो
1: या सिना कच्चा रिशुंगा स्ता कुन आस्ता